अगर आपकी उम्र 25 से 64 साल के बीच है और सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है तो रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। बहुत सी महिलाएं जिनको एचपीवी वायरस है या कैंसर शुरुआती स्टेज में है, उनको कोई लक्षण नहीं दिखते। याद रखें, चाहे कोई लक्षण ना हो, एचपीवी वैक्सीन लगा हो या मेनोपॉज हो चुका हो, तब भी स्क्रीनिंग करवानी बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग करवाने के लिए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, वुमेन वेलनेस सेटेलाइट्स, फैमिली डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट या एनजीओस के पास जा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में बुकिंग के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 3166-6631। जनवरी 2026 से वुमेन वेलनेस सेटेलाइट्स में एचपीवी सेल्फ सैम्पलिंग की सुविधा शुरू हो चुकी है। हांगकांग आइलैंड के नंबर हैं 2855-1333, कालून के हैं 2855-1222, न्यू टेरिटरीज के हैं 2851-1722। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.cervicalscreening.gov.hk। अपना ख्याल रखें और रेगुलर रेगुलर स्क्रीनिंग करवाएं। ओके, बढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर। दिस इज प्रिवेंशन ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 एंड अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस। इस सीजन में अलर्ट रहें, फ्लू, कोविड-19 और सांस की बीमारियां अभी भी चल रही हैं। अच्छी पर्सनल और घर की सफाई रखें, खांसी या छींक आए तो टिश्यू से मुंह और नाक ढक लें, हाथ लिक्विड सोप और पानी से कम 30 सेकेंड्स तक धोएं, बीमार फील हो तो मास्क पहनो और तुरंत डॉक्टर से मिलो। हर साल वैक्सीन लगवाओ, जितनी जल्दी उतना बेहतर। हाई रिस्क लोगों को कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए, जैसे केयर होम्स वाले, 65 साल के और 65 साल के ऊपर के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के क्रॉनिक पेशेंट्स, इम्यूनिटी कमजोर लोग और प्रेग्नेंट महिलाएं। ज्यादा जानकारी के लिए आप www.chp.gov.hk पर जा सकते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ऑलराइडी, आते हैं जी हमारे तीसरे अनाउंसमेंट पर। दिस इज सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन। सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन शॉर्ट में है SIV, फ्लू और उसके कॉम्प्लिकेशन से बचने का इफेक्टिव तरीका है। 6 महीने या उससे ऊपर के सब लोग जिन्हें कोई नोन कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हर साल SIV लगवाएं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। याद रखें, वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर को एंटीबॉडीज बनने में लगभग 2 हफ्ते लगते हैं, इसलिए जल्दी वैक्सीन लगवाओ ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। गवर्नमेंट का 2026 और 27 सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। एलिजिबल ग्रुप्स को फ्री या सब्सिडाइज्ड वैक्सीन पब्लिक क्लिनिक्स, प्राइवेट क्लिनिक्स और स्कूल्स में मिल सकते हैं। अपने डॉक्टर से अभी पूछो, अभी एक्शन लो, वैक्सीन लगवाओ। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप www.chp.gov.hk पर जा सकते हैं। ओके जी, आते हैं जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर। दिस इज आवर लास्ट अनाउंसमेंट। ये है जी द वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम। वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम, जिसे शॉर्ट में WFA कहते हैं, अब एप्लीकेशन के लिए खुला है। ये हाउस होल्ड के नाम पर अप्लाई होता है। पूरा हाउस होल्ड हांगकॉन्ग रेजिडेंट होना चाहिए। अगर आपके घर वालों के टोटल वर्किंग आवर्स, इनकम और एसेट्स लिमिट के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने में एक से ज्यादा जॉब्स के वर्किंग आवर्स काउंट किए जा सकते हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों। अलाउंस के टाइप्स हैं, टोटल 144 आवर्स या उससे ज्यादा तो वो बेसिक अलाउंस में आते हैं, 168 आवर्स या उससे ज्यादा वो मीडियम अलाउंस में आते हैं, और 192 आवर्स या उससे ज्यादा वो आते हैं जी हायर अलाउंस में। हाउस होल्ड की इनकम के हिसाब से फुल रेट, 3/4 रेट या हाफ रेट मिल सकता है। फुल रेट है बेसिक अलाउंस के लिए 1150 पर मंथ, मीडियम अलाउंस के लिए है 1380 पर मंथ, और हायर अलाउंस के लिए है 1610 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ। और हर एलिजिबल बच्चे के लिए एक्स्ट्रा चाइल्ड अलाउंस भी मिलता है। फुल रेट है जी उसका 1610 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ और पर चाइल्ड। नोट कीजिए, जो घर WFA ले रहे हैं वो साथ में कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस नहीं ले सकते। पूरी डिटेल्स, इनकम, एसेट लिमिट्स और एलिजिबिलिटी के लिए वेबसाइट आप ये चेक कर सकते हैं, www.wfa.gov.hk।
अगर कोई सवाल हो तो 24 आवर हॉटलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं 2558-3000। ओके, इसी के साथ जी हमारे सारे हो गए अनाउंसमेंट खत्म। अब जो प्लेलिस्ट है, ओके, तो अनोनिमस ने रिक्वेस्ट किया है अल्फाज बाय हमजा मलिक, सनी ने रिक्वेस्ट किया है कड़ी बाय प्रदीप सरान, गोपी ने रिक्वेस्ट किया है किंग बाय शुभ, सोनिया ने रिक्वेस्ट किया है सिन बाय सिद्धू मूसेवाला, अनम ने रिक्वेस्ट किया है लेट यू नो बाय हस्तिंदर, मार्को ने रिक्वेस्ट किया है हथियार बाय सिद्धू मूसेवाला, साइम ने रिक्वेस्ट किया है तेरे बिन बाय आतिफ असलम, मिस्टर सिंह ने रिक्वेस्ट किया है थ्रेट बाय इकबाल, अफाई ने रिक्वेस्ट किया है चेक बाय शुभ, रूबी ने रिक्वेस्ट किया है दीवाना फ्रॉम द फिल्म राज 3, और अंसा ने रिक्वेस्ट किया है क्या मुझे प्यार है, और इसको गाया है के ने। तो बाकी के जो गाने हैं वो मैंने डाले हैं क्योंकि और कोई रिक्वेस्ट थी नहीं। फेसबुक पर इस बार कम रिक्वेस्ट आई है, आई थिंक हाँ 11 रिक्वेस्ट आई है, स्टिल नॉट बैड, अच्छा है। लेकिन अगर और गाने सुनने, अगर और रिक्वेस्ट डालें तो और भी अच्छा है। तो एनीवेज वो जो गाने हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो तो मैंने बोल दिया। उसके बाद करण औजला का नया गाना निकला है अश के, और उसके बाद यो हनी सिंह का नया गाना निकला है कासा टुपका। फिर आते हैं जी दिलजीत दोसांझ, उन्होंने रिसेंटली हाल ही में लाइव शो किया था यहाँ पे लंदन में, और वो उन्होंने जैम पैक स्टेडियम किया था, यूजुअली 90,000 होता है जहाँ पे उन्होंने ये लाइव शो किया था। तो वहाँ पे बेसिकली 90,000 तो फुल था, ऊपर 2,000 एक्स्ट्रा थे, 92,000 थे। तो उन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान जी का गाना गाया था, उनको डेडिकेट किया था। तो गाना था जी वो सांसों की माला, तो अब वो भी लगाऊंगा मैं आपके लिए गाना। और एमी वर्क का नया गाना निकला है, गाने का नाम है उप्स, और अगर टाइम हुआ तो नवान संधू और धंडा नियोली वाला का गाना कट। एनीवेज तो आप ये गाना एंजॉय कीजिए, ये गाने एंजॉय कीजिए। आई शैल सी यू गाइस नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए जी द सेम थिंग जैसे कि मैं हर फ्राइडे बोलता हूँ, चिल करो, टेंशन ना लो, ते चढ़ दी कला चलो, रब रखा, गुड नाइट एंड गुड बाय।